0: उम्र पर महका जान दे।
1: बहुत
0: लो जी, ये सी सूफी कलाम
1: थैंक यू
0: ते
1: भाई,
0: एक
1: थैंक यू।
0: सॉन्ग जरा जल्दी जल्दी गुनगुनाना ना जे तरी जादे तू
1: जरूर
0: भी
1: जरूर, आउण
0: ते।
1: दियो, आउण
0: जी
1: दियो
0: जी जी जी

0: प्रसंग की रचना जिहड़ी कि जोगिंद्रपाल मल जी ने सांझी कीती है। इस तों बाद हुण मलकीत बुल्ला जी साढ़े एक शायर ने उन्हां दी ती है सिमी सोत्रा जी ओ दिल्ली नूं जिहड़ी बंगार पाउंदी होई एक जिहड़ी रचना लेके हाजिर हो रहे ने। सिमी सोत्रा जी दा दुआबा रेडियो दे प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है। सिमी सोत्रा जी जी आयां
1: लेके असी दिल विच आए आ जनून नी रद्द करवाने तेरे काले एक कानून नी लेके असी

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

जी दोस्तों, सारे दोस्तों का दुआबा रेडियो के मंच उत्ते निका स्वागत है। माफी चाहते अज दोस्तों काफी मुशक्कत घोल के काम कर करके टेक्निकल इशू दे नाल तुहाडे रूबरू होए आ। माफी चाहते हैं, तकरीबन 40 मिनट आप लेट है, पर जिन्ना कुछ भी कर सकांगे जरूर तुहाडे रूबरू होवांगे। अज सब तो पहला समा स्थिति तुहानू पता ही है जी, पर समय वल नू नहीं जावांगे ते समा खराब नहीं होर करांगे। ते सारे दोस्तों का दिलों धन्नवाद, तुसी इंतजार करदे हो, चाहे पोस्ट पा भी दित्ती सी कि अज प्रोग्राम नहीं हो पावेगा, पर तुहाडी उडीक तुहाडा प्यार मुहब्बत सब दोस्तों का खिच लिया। ते दोस्तों अज दीआं खबरां दे वल नू ही चलदे आ सीधा, जो अज दे मुद्दे ने। ते समा जिवें इजाजत देवेगा, जिवें सबब बनेगा, अगे गल्लां बातां करदे जावांगे। ते लाइनां तुहाडे लई खुल्लियां रहणगियां, +352 44 976 1962 स्टूडियो दा नंबर है। अजे वी कुछ कमी परेशानी लगदी है, पर आपां नाल नाल सूत कर लैणियां। थोड़ी जिहियां आवाजां जिहड़ियां ने अलग ढंग दे नाल निकलदियां दिखदियां ने। ते अज दोस्तों माफी चाहांगा, ते अज नाल दी नाल आपां पोस्टर दे नाल ही सारांगे, ते लाइव जिहड़ा वीडियो नहीं चल पावेगी उहदे लई वी गुस्ताखी माफ। ते अज समा ते स्थिति की गल करिए, 7 सितंबर 2026 का दिहाड़ा है, ते जिस दे विच अज दे विचार दे नाल शुरुआत कर लैंदे आ। थोड़ी जी दो क सत्रां ही सांझियां करांगे। कहिंदे हौसले बुलंद होने चाहीदे है, ते हौसले बुलंद होण तां सारा कुछ संभव हो सकदा है। ते दोस्तां मित्रां दा, सैणी साहब दा नाल, ते ओजला साहब, सारे जिन्ने भी तुसी दोस्त जुड़े हुए हो, जीरा साहब, सब दोस्तों की उड़ीक दे विच हाजर आ। कहिंदे ने कि जेकर हौसला चलिया गया तो मनुख की अद्धी समझदारी उसके नाल ही चले जाती है, क्योंकि बंदा 1.5 घंटा हो गया कमला होया पिया सी, ते पता नहीं लगता सी करिए तां की करिए, पर सारा कुछ दुरुस्त कर रहा। जिन्हां ने किया उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद है जी, ते प्रोफेसनल लोग फिर प्रोफेसनल ही होंदे आ। ते गल करदे आ दोस्तों अज दे दिहाड़े दे उत्ते, ते अगलियां गल्लां बातां दे वल चलदे आ। देश दे दीआं खबरां जो कहिंदियां ने उन्हां दी जिहड़ी है आपां गल्लबात करदे आ। जो दुनिया के उत्ते हालात ने पै गया है कलेश, कलेश वैसे साढ़े ही पै चलिया सी इत्थे, मतलब कि नैट दे नाल, ते बदल लिया है भेस, किन्हां ने बदलिया उहदे खुलासे करांगे। किसानां दा केस जिहड़ा है ते CGI बराजे ने नवें, ते भरणगे खमियाजे, हुण देखदे आ कौन कौन खमियाजा भरदा है। ते चंद दे उत्ते जिहड़ा ट्रंप दा कब्जा, उह दावा कर रिहा कि भाई चंद दे उत्ते कब्जा असीं कर लिया, होर मज़ की शै है। ते इसे तरह हुण तों लैके जिन्ना भी समां सबब बणेगा बणाउंदे आ। ते सब तो पहला तुहानू कुछ जड़ियां ने देश दे दियां खबरां सुनाउंदे आ, ते उम्मीद करदे आ आवाज़ ते अंदाज़ वधिया तरीके दे नाल पहुंच रहा होवेगा। तुसी थल्ले जरूर लिख देना, ते सारे दोस्तां दे मित्रां दे सज्जणां दे जिहड़े ने सुनेहे आ रहे ने। ते लो फिर पंजाब दे नाल ही शुरुआत करदे आ। पंजाब दे विच रांझसी जमीन तलाश कर रहा गैंगस्टर डिंपी जिहड़े ने चंदपान रोकी फाजलिका तो बाद हुण गुरप्रीत सेखों की सियासत दे विच एंट्री हो गई है। जफियां पईयां ने ते मूंह लकाए गए ने। गैंगस्टर तो बाद जिहड़ा बनिया गुरप्रीत सिंह सेखो रस्मी तौर दे उत्ते आम आदमी पार्टी आप दे विच शामिल हो गया। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਤੇ ਰੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਦਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ

0: वाह जी,
1: आप भी कांदे संबंधा बंदिया रब नू तू ठगी जाना
0: वाह जी, वाह,
1: ए। आप भेटा दे संबंधा बंदिया रब नू तू ठगी जाना ए। पर कलाम पर असर नहीं करदा रब दा भी खाकी हिस्सा फिर भी नहीं सरदा।
0: वाह जी,
1: पढ़दा कलाम पर असर नहीं करदा रब